छोटी छोटी तकरारों में रोका टोकी वाले यारों में छुपे छुपे से इशारों में ही जिंदगी है कहीं.